का बात करो, रात को दिन बना का बात करो, मैं कदे के चराग मद्दम है, जरा आंखें उठा का बात करो।